0: ये क्या है? Adobe Reader है। ये क्या रीड करता है? PDF। ये भी पता है, सब जानते हैं क्या है। अगर कोई नहीं जानता हाथ खड़ा कर दे, तो मसला है। ये क्या है?
1: WhatsApp।
0: ये तो बच्चा भी जानते हैं आज। इसे कौन नहीं जानता? ये क्या है?
1: फितना बुक।
0: अच्छा है और नया नाम है वैसे, फितना बुक। फेसबुक है जो आज फितना बन चुका है। ये क्या है? सब मिलके
1: ट्विटर।
0: ये क्या है? ईमेल नहीं है। इतना फर्क भी है जीमेल और ईमेल में, लोगों देख के बता सकते हैं क्या है, बड़ी बात है। ये क्या है? शक्ल से रोबोट लगता है यार, ये एंड्रॉइड कैसे हो गया? रोबोट नहीं है ये। चले, उन्होंने कहा एंड्रॉइड, हमने कहा एंड्रॉइड, हमने भी मान लिया। ये क्या है? इसे भी सब जानते हैं। ये क्या है? मिकी माउस। धीमी आवाज में क्यों कहा, जोर से कहे मिकी माउस। ये तो बच्चे भी जानते हैं क्या है, अगर ये शक्ल सूरत नहीं उसकी, एक शेडो है। चलो ये भी जान लिया हमने। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ये क्या है? क्या है एक, क्या ये पहले पढ़ो तो सही, क्या है यार? ESPN। स्पेन नहीं है, एक जैसे एक सब स्पेन पढ़ने गलत है। अगर उसमें मेरे जैसा कुछ स्पेन पढ़ ले इसे, हंसी नहीं आएगी? क्या ख्याल है? नहीं पढ़ सकते ना स्पेन इसे, इसे पढ़ेंगे ESPN, अलग से पढ़ेंगे ना। चलो ये भी हम जानते हैं। अब सीने पे हाथ रखें। ये क्या है? क्या नाम है इसका? सूरत अल फलक। हम में से कितने हैं जो सूरत फलक की तफसीर जानते हैं, पूरी तफसीर जानते हैं? मैं फिर पूछूंगा, फिर यह ना कहना भी पूछ लिया। सच बोल, नहीं आते कोई मुश्किल नहीं है, सीखने के लिए हम लोग आए हैं ना। मुकम्मल तफसीर, अच्छा तफसीर नहीं आती, मुकम्मल तर्जुमा आता है। दो चार यार और हाथ बढ़ा ले यार, क्या होता है? तर्जुमा मुकम्मल आता है, अभी पूछूंगा दो लफ्ज नहीं आएंगे। जिसे आता है वो पूरी सूरत का तर्जुमा आता है। अल्लाह मुस्तान। चलो पूरी सूरत तर्जुमा नहीं आता, एक आयत का तो आना चाहिए ना। इस आयत का तर्जुमा आता है? हाथ खड़ा करें या मुझे जरा कुछ कर दे। चले आयत के एक हिस्से का तर्जुमा इसका, गासिकिन इदा वक़ा। जानते तर्जुमा क्या है? जो जानते हाथ खड़ा करे। एक बंदा जानता है बस, गासिकिन इदा वक़ा का एक बंदा जानता है तर्जुमा। अच्छा देखें, हम सीखने के लिए आए हैं, परेशान ना होना। अच्छा एक लफ्ज तो आना चाहिए ना, ना सूरत का तर्जुमा मुकम्मल आता है, एक आयत का भी नहीं आता, आयत के एक हिस्से का भी नहीं आता तर्जुमा, एक लफ्ज का तो आना चाहिए। अऊज़ु का तर्जुमा सबको आता है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। जानते मायना क्या है अऊज़ु का? पनाह, पनाह मांगना तो हर बंदा कहते हैं, जो भी कुरान पढ़ता तो तर्जुमा बरेलवी का पढ़े, दियोबंदी का पढ़े, सब पनाह मांगते हैं कि नहीं? सही मायना कितने लोगों को आता है कि पनाह मांगना क्या है? इबादत है। इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। अगर गैर से पनाह मांग ली तो उसे क्या कहते हैं? शिर्क फिल इबादत कहते हैं, शिर्क अकबर है। ये कितने लोगों को आता है? फलक के क्या मायना है बोले ना? सुबह गासिकिन, क्या चीज? छा जाना, गासिक छा जाना। अरे क्या हो गया, उल्टा पढ़ते हो तर्जुमा के? वो वक़्फ का है, मैं गासिक का पूछ रहा हूँ। रात या अंधेरा, रात को भी कहते हैं, अंधेरे को भी कहते हैं, और वक़्फ छा जाना। और समद का क्या मायना है? चले सूरतुल फलक तो थोड़ी सी लंबी है, सूरत अल इखलास तकरीबन हम जब जल्दी में होते हैं तो सूरत इखलास ही पढ़ के नमाज जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। समद हम बार बार पढ़ते हैं, समद का क्या मायना है? बेनियाज, सब जानते हैं, ये इधर से सुनकर वो बोल रहे। बेनियाज का क्या मायना है? चलो बेनियाज तो तर्जुमा तो पढ़ लिया हमने।

न्याय में जब तक कोई वसीला नहीं होगा अल्लाह ताला सुनते नहीं है। ऐसे तो अल्लाह ताला सुनेगा नहीं, जब तुम अल्लाह को पुकारोगे तो सुनेगा कैसे अल्लाह ताला। अब क्या समझते हैं, जो शख्स राम के आगे सर झुका के खड़ा है इस बुत के आगे, उसकी ये बुत पूरी कर रहा है? जो गाय के आगे सर झुका के खड़ा है उसकी बिगड़ी ये गाय बना रही है? अल्लाह ताला सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने एक रास्ता इख्तियार किया। गाय को वो अपना मुश्किल कुशा समझता है तो अल्लाह ताला जाओ, जो जिसको जो समझते हैं उसी के हवाले। मन तअल्लक शयइन उकिल इलैहि, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जिस चीज से जिसका दिल जुड़ जाता है मैं उसको उसके हवाले कर देता हूं। तुम्हारा दिल अगर अल्लाह ताला से जुड़ा है तो तुम अल्लाह ताला के हवाले हो, अगर किसी और चीज से जुड़ा तो तुम उसके हवाले हो। याद रखिए, जिसने तावीज लटकाया हुआ है, अगर तुम्हारा दिल जुड़ा है इस तावीज से कि यही एक सबब है जो मुझे परेशानी से बचाएगा या तकलीफ को दूर करेगा, जाओ उसी के हवाले हो तुम। लेकिन अगर तुम्हारा दिल जुड़ा है रब कायनात के साथ, दुल जलाल वल इकराम के साथ, तो अल्लाह ही तुम्हें काफी है। तो दुआ मेरे भाई बहुत जरूरी है, दुआ मांगे रोजे की हालत में, सजदे की हालत में, इफ्तारी के वक्त। रोजेदार है इफ्तारी के वक्त और सजदा, ये वो अवकात है जिसमें दुआ की इस्तिजाबत का बेहतरीन वक्त होता है। और रात को सलातुल लेल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पे नाजिल फरमाते हैं, नाजिल होते हैं। कोई है जो मुझसे मांगे, कोई है जो मगफरत तलब करने वाला, सवाल करने वाला कोई है, वो वक्त है। ये खास अवकात हैं, इनको जाया ना कर होने देना। तो दुआ भी रमजान में खास तौर पे, दुआ तो एक मोमिन का हथियार है, हमेशा होनी चाहिए, लेकिन रमजान में तकीद के साथ खास एहतमाम करना है। और नंबर 10, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुफ्तह फीह अबवाबुल जिनान, रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वतुग़लक़ फीह अबवाबुन निरान, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वतुसफ्फत फीह शयातीन, और शैतानों को कैद बंद कर दिया जाता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, से बुखारी मुस्लिम की रिवायत। इतने काफी है, और इस सबसे बड़ी अहमियत जो है, आप जानते हैं कि अरकान इस्लाम में से रोजा चौथा रुकन है, जिसके बगैर किसी मोमिन का ईमान अल्लाह ताला के काबिल कबूल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम पांच बुनियादों पर बना है। अशहद शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व इकामिस सलाह, नंबर 3 व इताइज़ ज़कात, नंबर 4 व सौम रमज़ान, नंबर 5 व हज बैतिल्लाह अल हराम मन इस्तता इलैहि सबीला। तो चौथे नंबर पर जिक्र है रमजान का, कैसे इस्तकबाल करें। अब यह था क्यों इस्तकबाल करें, अब इस्तकबाल करने की जरूरत है कि नहीं? इतना अजीम महीना आ रहा है मेरे भाई, इस्तकबाल करें नहीं करें, क्या ख्याल है? करना चाहिए ना, करेंगे ना? अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। सहाबा कराम अजमईन रमजान के 6 महीने बाद तक अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल फरमाना, हमारे इबादत कबूल फरमाना जो रमजान में किए 6 महीने पूरे। जब 6 महीने खत्म होते रमजान के बाद, फिर दुआ करते 6 महीने, अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह ताला जिंदा रखना रमजान तक। फजीलत वाला महीना, अजीम महीना, जिंदगी में 1 साल ना आए तो कितनी अजीम इबादतें और कितनी अजर सवाब से इंसान महरूम रह जाएगा। तो उनकी सोच वहां पे आसमान की तरफ थी, मट्टी की तरफ सोच नहीं थी उनकी। फर्क इतना है, आज हमारी सोच जमीन पर है,